ये तो मगे चित्र बॉय डैडी पुकसी नंबर वन नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सिक्स पुकसी ने तो थ्री हंड्रेड थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन 172,000 and 8,000 and 84,000 star 441 hash. Hang on, leave a pass at your boy. Call me which one would I be? *441# *441# *441#. *441#.